पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले मध्याह्न 12 बजे

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले दिउँसो १ बज्यो।

0: ओ मेरो फुलीवारी, अब के छ त विचार?
1: के विचार? को फुलीवारी? मसु बहिनी।
0: बहिनी त चाली, तिमी नै त अनि मेरो फुलीवारी।

पार्थिवास एफएम समय सूचक यो पार्थिवास एफएम को समय हो अहिले साँझ 7 बजे